0: ये वो आजाद आई थी सास स्वागत में लाए के रहता खान सा दे ले दागहते अगर दी दागहते अगर दी गाय था सरदा लगाए था संयोग याठी ना दे ले सोने को ये लगता था था कोई ना आता है दी ये का सोन दे दी वो कहा था जगह माह दा ने हो गई दो सोने की
1: Da jibi judes ku he gaddu ho de in wo gaddi ho la no gaddi ne zi